0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403

0: 7194300 403-719-4300 और जानकारी ले साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: जी की
1: फतेह। गुरु रूप गुरु की साजी लवाजी गुरु सुख खालसा साध संग जी। आज दे पावन पितर बख्शिश भरे सतगुरु पातशाह के पावन फरमान विच हजूर ने कुछ वक् वक् पक्षों का जिक्र किया है। सब तो पहले पदे दे विच हजूर कहिंदे तू गुरमुखा शुकराना बण, सारे तो वड्डा गुनाह अकृत घनता का। दूसरा तो यह कहना भी मैं गुरु को जाना है ते गुरु मैनू की देंदा है। सतगुरु पंचम पातशाह कहिंदे भी गुरमुखा दुनिया के जिन्ने पदार्थ ने उन्हां दी कुछ कीमत है, कोई लिमिट है, लेकिन जिहड़ा गुरु ने नाम दिता है उसकी किसी प्रकार को दुनिया का बंदा कीमत कर ही नहीं सकता, इन्ना बकीमता नाम है। फिर आप सवाल करते भी पातशाह तुसी कहिंदे नाम जपो नाम नाल जुड़ो, यह नाम करेगा कि ते तीजे पदे विच गुरदेव कहिंदे भी गुरमुखा जिहड़ी तेरे अंदर मैं ते तू है ना ये निकल जाएगी, ये मेरा ये तेरा ये ख्याल मुक जाएंगे। ते सब तो अखीरली स्टेज जो चौथे पदे च लिखी है वो ये है, कई गुरमुख प्यारे कहिंदे भी ज्ञानी जी मैं 5 मिनट मूल मंत्र का अभ्यास करता हाँ, मैनू अजे तक गल चेते है। गंगानगर एक बीबी मैनू कहन लगी भी ज्ञानी जी मेरा पिता 5 वेरा वाहगुरु कहिंदा ते वो कहिंदा मुड़ के लोड़ ही कोई नहीं, ये कोई 40-45 साल पुरानी गल है, पर याद रखना गुरमुखो मैं हर मौके ते तुहानू बेनती करदा है आपां पाठां दी गिणती करांगे पापां दी नहीं जी आउणी। इन्ने पाठ कर ले इन्ना जाप कर लिया आपां इहो ही कहना है, लेखे कते ना छूटिए खिन खिन भूलण हार बख्शण हार बख्श लै नानक पार उतार। भी पातशाह जे तू गिणती करी ने तो गिणती नाल बात नहीं बननी, क्योंकि मेरा श्वास श्वास गुनाह नाल भरिया पिया है। पर मैं तेरे बारे सुनिया मेहरबान साहब मेहरबान साहब मेरा सदा मेहरबान। मैं पढ़िया पाव खंडन दुख भंजन स्वामी भगत वशल निरंकारे कोट अपराध मिटे खिन भीतर जां गुरमुख नाम समारे। समारे तो भाव जदों गुरु दे सन्मुख हो करके उहदे नाम दा चिंतन करदिआं नाम जपदिआं ना ते सतगुरु पातशाह कहिंदे भी गुरमुखा 1-2-3 नहीं, जिवें आपां निक्की जी तीली लैंदे आ ते मणा मूं बालण पिया होवे लक्कड़ पई होवे सड़ जांदी है। इस प्रकार परमात्मा दा नाम अजिहा है कि जिन्ना भी गुरमुखां ने जप लिया उन्हां दे तमाम पापां ते गुनाहां दी जिहड़ी निवृत्ति हो गई। ये गुरमुख इस समुचे शब्द का निचोड़ है ते मैं आरंभ विच बेनती कीती है कि सब तो वड्डा गुनाह अकृत घनता दा, अपने नाल कोई नेकी करे। जिहड़े अंग्रेज लोग ने ना उन्हां दा रुमाल डिग पै ते आपां उन्हां नूं कहीए भी भाई साहब तुहाडा रुमाल डिगा ते वह कहणगे जी बंडल ऑफ थैंक्स, ना को लिया ते ना दिता, पर जिहड़ा उन्हां नूं धन्नवाद किया उहदा भाव हुंदा भी अकृत घनता दा दोष खत्म हो गया। रुमाल डिगा फड़ाया ते उन्हें आख्या धन्नवाद, ते गुरदेव कहिंदे जिन्हें तैनूं इन्ना कुछ दिता कदी उहदा धन्नवाद भी कर लिया कर। आपां सुखमनी साहब की पावन बाणी च पढ़दे हां निर्गुण आर इयानिया सो प्रभ सदा समाल जिन किया ते चीत रख नानक निभ ही नाल। तो रहो विचार, क्योंकि आपां इहनूं विचारना ते मुड़ के हुक्मनामे दी जो लड़ीवार कथा वह भी करनी है। भाई साहब भाई गुरदास दीआं वारां नूं पढ़िए और उहदे विच इक दृष्टांत दित्ता किरत करता दा। मैं केवल ते केवल एक दृष्टांत साझा करना है। वह लिखते ने मध विच रिद्धा पा के कुत्ते दा मास से ध्यान दिया जे, मैं अपने कोलों नहीं कह रहा, कहिंदे मध विच रिद्धा पाए के कुत्ते का मास धरिया मानस खोपड़ी विच मंदी वास रत्तू भरिया कपड़ा तिस कजन टास आग सुनाए पुछया लाहे विश्वास नजर भवे अकृत कण मत होए बड़ास। मैं संकेत रूप च गल की है, कुत्ते दे मास नूं माड़ा मन्निया जांदा है, शराब माड़ी है। जिन्हों जिन्ना चिर बंदा जिउंदा है ना, शुकर करिया करिए, पशुआं दी हड्डियां भी कम, चमड़ा भी कम, पर बंदे का कुछ भी कम नहीं। बाणी दी पंक्तियां नरू मरे नरकाम ना आवे, पशु मरे दस काज सवारे, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं बाबा रे। नरू मरे नरकाम ना आवे, बंदा मर गया तो किसे कम नहीं, पशु मरे दस कार सवारे, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं बाबा रे। मैं आप की दसा पातशाह, रौ विचार। भाई जी कहिंदे एक ढिले जीवन वाली औरत ने, याद रखना गुरु घर विच बंदे दे कर्म करके जाती है, जन्म करके कोई जाती नहीं। ਇਹ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੱਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੱਤਰੀ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਛਿੰਬਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੱਟ ਵੱਜਿਆ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫਲਾਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਛੋਟਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਭਰੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਦਰੀਆਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਰੱਬ ਪਿਆਰਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚਾਰ ਗਿਰਾਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਰ ਗਿਰਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਗਏ ਆਵਣ ਨਾ ਗਏ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ, ਨੰਗਾ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਗਰਕੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ, ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਭਾਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਈ, ਤੇ ਪਾਇਆ ਕੀ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਲਿਆ। ਮਾਦ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧਾ ਪਾਏ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਕਾ ਮਾਸ, ਟਾਕਲ ਝੱਲੀ ਚੂੜੀ, ਕਜਣ ਤਾਸ ਆਗ ਸੁਣਾਏ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਬੜਾ ਢੱਕ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕੀ ਢੱਕਿਆ ਏ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰਾ ਢੱਕਿਆ ਢੱਕਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਢੱਕਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਏਡਾ ਮਾੜਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਪਚਾਰ ਨਾ ਔਰਤ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟੱਕਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਂ ਚ, ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦਾ। ਇਸ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਬਣ ਜਾਈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street, North East, Calgary,

0: परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसने अपनी लड़की का विवाह किया अपनी रिटायरमेंट से 6 महीने पहले, और उसको पता था कि मैं आमंत्रित करूंगा अपने अंडर जितने भी अन्य अधिकारी हैं वो आओगे, कोई 1 लाख लेकर होगा, कोई 50,000, कोई 10,000 दिखा दिखा कर देगा, और ऐसा ही किया। फिर वो रिटायर हो गया, उसमें 3-4 लाख रुपये बेटी के ब्याह लगाए। ये सन 1988 की बात है, 89 की। उसमें 3-4 लाख तो आज के 30-40 लाख समझो। अब लड़की का विवाह कर दिया, 3-4 लाख रुपए लगाए, और कर्मचारी अधिकारी कोई 2,000, कोई 10,000, कन्यादान को 20,000, कोई 50,000। और फिर क्या हुआ, उस विवाह के 6 महीने के बाद उसको तलाक दे दिया उसके पति ने। अब उस झटके में उसने पता था इतना 4 लाख में लड़की ब्याही है, और दोबारा ब्याहूंगा तो 8 लाख लगेंगे, हार्ट अटैक होगा मर गया, अरीब के बनेगा, अब गधा बनेगा वो, और जिस जिस से ले रखे थे उसके लठ मारेंगे, डोवेगा। परमात्मा के विधान से जब हम परिचित हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा ये किसी से पैसा लेना, तो पुण्यात्मा इस प्रकार से ये स्थिति बदलेगी। तो पहले जो ये व्यवस्था थी उस समय किसी कोई भी लड़की का जन्म नहीं चाहता था, विवाह होते ही ये सोचा करता भगवान संतान हो और पुत्र हो। अब वो चाह रहा था कि पुत्र हो, लेकिन पुत्री का जन्म हुआ। फिर दूसरी बार देखा है भगवान, अब कह तो दया करे परमात्मा पुत्र हो, रुआ भी पुत्री होगी। अब तीसरी बार जब गर्भ रहा, उसकी पत्नी को परिवार को भी यही आशा हुई कि हे भगवान पुत्र हो, वो भी पुत्री होगी, और चौथी भी पुत्री होगी, पांचवी भी बेटी होगी। अब क्या मनुष्य का चाहा हुआ, क्या मनुष्य का किया हुआ, वही हुआ जो उसके मस्तिष्क में पहले लिखा हुआ था। तो यहां अगर कोई ये सोचे तो इसको कहते हैं उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। तो पुण्यात्माओं, जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी 90% बकवाद हट जाएंगी। ये छोटी छोटी कथाएं हैं जो आपके बहुत काम आऊंगी। एक समय एक गांव में, एक नगर में एक सेठ रहता था, और उसने अपने गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्त किया था उससे ये पता लग गया था कि भाई अब ये व्यवसायिक जो लोग होते हैं ये देखा करें कि अभी कहां मुझे लाभ होगा, इन मोक्ष से कोई लेना देना नहीं होता। तो उसने ये पता पूछ लिया अपने गुरुजी से जब सत्संग कर रहे थे, फिर बाद में पूछा कि गुरुजी यूं कहते हैं कि जैसे इस जन्म में किसी ने किसी से पैसा ले लिया और वो नहीं दे सका, तो अगले जन्म में वो 1,000 गुना करके वापस देना पड़ेगा। कहा बेटा ऐसा ही होता है। तो उस लाला जी ने क्या करया, अपना बोर्ड लगा दिया दुकान के आगे, ले जाओ जिसने कर्जा चाहिए, किसी ने लोन चाहिए ले सकता है, लेकिन अगले जन्म में लूंगा, इस जन्म में लू कोई ना। अब ये जो पैसे के पुजारी होते हैं ये इसे इतनी गिरजैन की वृत्ति बताते हैं। एक लाला जी मर गया, यम के दूत पकड़ के ले गए, तो उससे पूछने लगे भाई तेरे को पहले स्वर्ग में भेजा या नरक में, क्योंकि तेरे इतने पुण्य इतने पाप। नो बोला दोनों के बीच में बिठा दे, नो उनके भी आओगे गाकर नरक वाले भी आओगे, दोनों के बीच में बिठा दो उन्हें। यानी वहां भी अपने बिजनेस पॉइंट व्यू से ही सोचा उसने। तो इसी दृष्टिकोण से उस लाला जी ने अपने गेट पर ये बोर्ड लगा रखा था कि अभी इस जन्म जो कोई लोन लेगा तो अगले जन्म में लूंगा उससे। दो ठग थे, उन्होंने वो बोर्ड पढ़ लिया, वो चले थे चोरी चारी करने, उन्होंने बोर्ड पढ़ लिया, दोनों बतलाए रही साहब मूर्ख, हमने तो पहली बार देखे, मेंटल तो नहीं है। अब उससे बात करी, भाई लाला जी हमने 200-200 रुपये कर्ज दे दे, बोले ले ले भाई। वो पक्का करे थे, वो कहने लगे भाई देखा हम तो जल्दी देवांगे, व्यवहार के पक्के आदमी है। वो कहने लगा ना भाई मैं तो अगले जन्म में लूंगा। अब उन्होंने फिर पक्का करे करना भाई हम तो 6 महीने के भीतर तेरे वापस दे देंगे ब्याज रुपया। वो बोला ये ब्याज लूंगा और अगले जन्म में लूंगा, ना तो जाओ तुम। तो उन्होंने सोचा अच्छा भाई ले अगले जन्म में ले, उन तो ठगना था ही वो। उन्हें दोनों अपने 200-200 रुपये या जैसा भी 100-100 या 500-500 लिए और दरे गठड़ी में चल पड़े। आगे वो चलते जा रहे थे, एक गांव के बाहर एक तेली का घर था। पहले तेली होते थे, कोल्लू चला करते थे बैल से, और उसमें सरसों पीड़ा करते थे और तेल बनाते थे। उस तेली के आंगन में कोल्लू लग रहा था, एक बैल तो चल रहा था, कोल्लू चला रहा था, एक वहां खड़ा था पेड़ से बांध रखा था। तेली किसी कामवश गांव में गया हुआ था, वो दोनों वहां रुक गए, जलपान कर ले, पानी पी लेते हैं। उन्होंने पानी पिया तो दोनों बैल बतला में थे, आपस में बातें कर रहे थे। अब जो बैल, उसने उसके 500-400-100-200 जिसे रुपये मांगे और उसने दे दिए। वो दोनों जने अपनी पोटली कड़क कर बांध गए, उस बैल लेकर गया था, उसके साथ साथ चल पड़े। ये और देखेंगे वहां पर, ये बताए थे इन्होंने कि बैल हाथी को हराएगा। वहां क्या हुआ कि वो जाके खड़े हो गए, दंगल लगा हुआ था, हाथी आपस में कुश्ती कर रहे थे, एक हाथी सबको पराजित करता हुआ चल रहा था और लास्ट में वो अकेला खड़ा हो गया कि और लाओ वे जिसका कोई हाथी हो, गुड़ाओ इसके साथ, ये केसरी हो गया। वो जाकर खड़े होकर तमाशा देखने लग गया, बैल पकड़ रखा था रस्सा हाथ में, वो बैल हाथ से रस्सा छुटा कर हाथी की तरफ भाग लिया। लंबे लंबे सींग थे पहने पहने, हाथी ने उसका सूंड मारा, वो सूंड लग गया, सींग फंस गया सूंड में, और हाथी मारे किल की चिंगाड़ बाज गया। हाथी का सूंड में दर्द बहुत होया कर, हाथी किलकी मारे रोवर लीद कर, उसने सोची मेरा निकी आ गया सिंगाला, हाथी भाग गया। तो वो विजयी हो गया बैल, 1200 रुपए राजा ने इनाम दे दिया। वो 1200 रुपए उनके पास आए, उस बैल वाले के पास, उसी समय बैल की मृत्यु होगी। अब वो दोनों जने उनके पैरों तले की जमीन खिसकन लगी, क्या तो बूंदी बनेगी, बैल बनना पड़ेगा इस लाला जी का, जिसके पैसे ले आए हम। वो दोनों वापस आ गए। अगले दिन नौ के नौ दोनों पैसे रख दिए, एक सेठ जी अपने पैसे पकड़े, ये मारा पनी उठाई पे, लाला जी ने ठाकर बार गली में फेंक दिए, अकमार मेरे लख कितने ले जाओ, हम ना मैं ना लू ही अगले दिनों में लूंगा। और वो ठाठा उल्टे धरे, उसके हाथ जोड़े, लाला जी माफ कर दे, अगले जा मैं ना लू कती भी। वो बार फेंक है, उन्हें सोची बड़ा साका होया भाई। अब वो उठा के उसने भी वैसे तक गेरे क्यों कर, क्योंकि देना पड़े, वो तो बहुत सुरक्षित रखने पड़े उनको, कदे को छीन भी ना ले जा, थारे ते बचाव रखे ही। तो उसने सोचा भाई साधु संतों के पास इसका कोई समाधान होता है। एक संत कहीं बैठा था, वहां पहुंच गए और कहने लगे महाराज जी हम एक कसूते संकट में फंस गए, कोई समाधान बताओ, सारी कहानी बता दी। अब वो संत बोला भाई एक काम करो, इसका कोई धर्मपुन में ला दो, उस लाला जी के नाम पे तुम यूं करो, एक धर्मशाला बनवा दो मेन रस्ते पे और एक कुआ बनवा दो, उस पर लिखवा दो लाला जी उस सेठ का नाम के उसके नाम की धर्मशाला, और तुम यूं करियो उसमें किसी को रुकने मत देना और ना उस कुएं में पानी किसी को पीने देना। बोला जी फिर क्या होगा, फिर तुम बताओगे क्या होगा, और जो मैं कहूं इतना कर दो। अब वो उन्हें सोचा भी महात्मा ने जो कहा है तो बात फिर ये जाना आगे क्या होगा। उन्होंने एक मेन रस्ते पर जो स्टेशन से उतर कर गांव को आता था, स्टेशन से उतर करके जो यात्री आते थे उस नगर के, स्टेशन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था नगर से, उसके बीच में बनवा दिया। उसके मतलब 2-2.5 किलोमीटर था तो 1.25 किलोमीटर दूरी पर बना दिया, और वो कुआ बना दिया, एक धर्मशाला बना दी, लिख दिया लाला जी का नाम जिस पर उन्होंने लोन लिया था, उधार ली थी। अब वहां यात्री आवे और पानी पीने या थोड़ी देर विश्राम करने के लिए धर्मशाला की तरफ जाऊं, वो दोनों लकड़े लट लेकर खबरदार दे यहां आगे होता है, चलो यहां से। तो वो कहने लगे भाई क्यों तुमने धर्मशाला बनवा रखी, कुआ बनवा रखा, रुकने क्यों नहीं देते, जल क्यों नहीं पीने देते। हकी लाला जी ने पूछ लो भाई, इसने मना कर रखा है कि यहां हम दोनों नौकर छोड़ रखे हैं और कह रखे ना इसमें किसी को रुकने देना ना इसमें पानी पीने देना। इवाम आदमी ने बोले बड़ा मूर्ख आदमी, इतना पैसा ला दिया और फिर किसी को यहाँ टिकने भी नहीं देते आयो, यो कैसा लाला जी हुआ, सब गाड़ी देते जाओ। एक दिन उसका समधी आ गया, उसके लड़की ब्याह रखी थी, वो समझी भी आया, उसने देखा पढ़ा अको हुई तो अपने ही रिश्तेदार का बनवाया हुआ है, और अच्छी मरोड़ी सी में पहुंचा, चला उधर को, वो दोनों लकड़े लट ले गए, खबरदार जो इधर आया था। वो कहने लगा क्या बात भाई, मैं इसका रिश्तेदार हूं। नोला बार चल तू किससे का रिश्तेदार हो, इसने ये कह रखा इस सेठ ने कि इस धर्मशाला में कोई रुक नहीं जा और इस कुएं से कोई पानी नहीं पी ले, मारी ड्यूटी ला रखी। वो आया फिर अपने रिश्तेदार के घर आना ही था उसने, उसने उससे कहा रे तू बड़ा नकम्मा आदमी, क्यों तो इतना पैसा लगावा था तने, वहां कितने पैसे लगा रखे, धर्मशाला बनवा रखी, कुआ बनवा रखा, और वो दो मस्टंडे छोड़ रखे तन, ना पानी पीने देते किसी ने और ना हुआ रुकने देते, फिर क्यों इतना पैसा बर्बाद किया, तेरी बुद्धि खराब होगी क्या। अब उन्होंने सोचा भाई कौन सा कहां धर्मशाला है, कौन सा कुआ है। वो काफी देर सोचता रहा क्या बात है, क्या कह रहे हो आप, कह के मैं दूठ रहा हूं, तेरा नाम लिख रखा और तेरे नाम से धर्मशाला बनवा रखी, कुछ लाला जी ने धर्मशाला बनवा रखी है, उसी ने ये कुआ बनवा रखा है और वहां दो खड़े हैं, वो लठली है इन्हों का किससे न्याण दे, लाला जी ने कह रखी है। उसने सोची देखू तो कहा, वो उस दोनों जने आए देखे तो वो खड़े सामने लठ गए, वो जान गया कि ये तो भाई मेरी बेइज्जती करवा दी ने थे। तो कहने लगे भाई तुम क्यों कर पीछा छोड़ो मेरा, वो सेठ बोला न बोला मारी वो कलम तार दे और कह दे मेरे आए हो लिए भाई ये दो जोड़े हाथ, मैंने तुम्हारे अपने लोन खत्म कर दिया और मान लिया वे तेरा तुम्हारे सारे पैसे आ गए, मेरी बेइज्जती ना करो तुम। तो वो अपने गए और फिर मजदूरी करके अपने गुजारा किया, साधु संतों से उपदेश लिया, भक्ति की कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं ये सत्कर मान लेना, भले ही आपको एक दंत कथा लगे लेकिन ये आपके हृदय में उतर जानी चाहिए, आज क्या हालत है जीव की। तो इस प्रकार जब अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा आपको, आप ये गलती नहीं कर सकते हैं। ये दास देख रहा है, पहले शराब पिया करते थे, ताश खेला करते थे, दुनिया ने लूटा करते थे, 2 के 20 बनाया करते थे, चाहे कोई दूध बेचता था या कोई दुकानदार था, और दूनी बिरान में टियोरी थी उनकी। और आज वो प्राणी ही किसी का 10 रुपए आ जाते हैं ना गर्दे काम वापस। एक बहन बता रही थी कि मैंने एक लाला जी से कपड़ा लिया, उसने रेट बताया, कम बत्ती करके जो हमारा फाइनल रेट हुआ वो 200 रुपए का हुआ, और मैंने उसको 1000 का नोट दे दिया, उसने मेरे को 1250 रुपए वापस दे दिए, चुप करके उसका धोखा लगा। तो मैंने उस टाइम तो ध्यान रहा नहीं और घर आके देखा कि मैं तो इतना का सामान लाई हूं, इतना पैसा मेरे पास, ये फालतू आ गया सेठ का। अगले दिन गई और उसके वापस पैसे दिए उसने, जितने भी वो फालतू थे, वो उसके मुंह का नहीं देखे, ए बेबे ए बेटी तू तो देवी उतर रही है, यहां तो ठा ले जा, वापस देने की बात दूर से जब दाव लग जाता कि मैं और भी ठा ले जा लोग, और तू वापस देने आ गई, मेरा तो याद भी ना थे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर आपके पास किसी का एक नया पैसा भी हजम नहीं हो सकता। आत्मा नहीं मानना आपकी, क्योंकि इसको पता है फिर के दुर्गति होगी और कैसे पूरे करने पड़ेंगे। गधा बन के कुम्हार के घर पे ये प्राणी उसके पूरे करेगा, और फिर कितना कष्ट उसके ऊपर से गुजरेगा वो ही जाने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा बताने के लिए कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब हम परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी एक विशेष व्यवस्था बनेगी, आत्मा के अंदर एक विशेष उभार आवेगा। अब देखता ये दास आज भी कम से कम चार भक्त आए थे, न बोले जी रस्ते में 100 रुपये पड़े पाए, अब वहां देवा किसने, यहां दान कर दिया, घर पर नहीं प्रयोग हो सके। और पहला के सची थी नो देख के ठा करते को देखते ना ले हरगोज मंगा लेते। तो ये वृत्ति हमारी बदलती जा रही है। कोई कहता 500 रुपये, कहता जी ऐसे 5000 रुपये पड़े मिले मुझे, और जा रहा था एक व्यक्ति आ रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे इसका कुछ गुम हो गया। मैंने उससे पूछ लिया, भाई कहां से आए हो, कहां जा रहे के? वो कहने लगा, कहां जा रहा हूं, मेरे पैसे गिर गए और जेब मत निकल गए, किस प्रकार मैं कुछ सामान निकालू था, और सारे देख लिया मैंने पाए। कितने पैसे थे तेरे भाई? के 5000 रुपये थे, ये नोट थे। नो बोला नो के जुब्बे में, उसको निकाल के दे दिए कि ये थे। उसने सीने से लगा लिया मेरे को, नो बोला राज के युग में इसे देवता बचे हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये बिल्कुल स्थिति बदल जाएगी और आपकी आत्मा इतनी खुश होगी उस पैसे को वापस दे करके। और यदि हम किसी की चोरी करते हैं तो दूना दुख होता, उस प्राणी का दूना विनाश होता है। एक भक्त बहुत गरीब था, किसान था, और उसने परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि वो परमात्मा रह रह कराते रहते हैं, कभी किसी साधु रूप में, किसी संत रूप में, या किसी वैसे एक जीवन वो पूरा एक जनसाधारण जैसा जी कर भी पूरा करते हैं। तो वो गरीब आदमी था, वो कहने लगा महाराज जी बहुत ही स्थिति खराब है, परमात्मा का ज्ञान सुना, परमेश्वर ने कहा बेटा नीत साबित रखिए, तेरा कमी नहीं रहेगी और ये भक्ति करता रहे, जितना तुझे चाहिएगा भगवान 21 देगा तुझे। अब क्या हुआ कि उसके एक बैल था, उससे गुजारा कर रहा था, एक चोर था। उस चोर ने क्या सोचा, वो चोरी करने के लिए निकला, उसने देखा एक गरीब व्यक्ति और गर्मी के दिनों में सो रहा है, उसके एक बैल बंधा है, उस एक बैल ने चुरा ले गया। अब चोर तो क्या है, जैसे 100 रुपये का बैल होगा, उस समय की बात बहुत पुराने समय की, तो उसने तो 10 रुपये का बिक गया, वो भी बेच दिया कि कहीं कोई पकड़ा ना जा तू, या 20 रुपये का, और बेच ब्याज खा पी कर फुर वो तो फिर उसाय हो गया। उसने कुछ दिन के बाद फिर ऐसे चोरी करता करता उसने सोची, चल उस जिसका बैल चुरा के लाया था वो शरीफ आदमी लग गया ना, को पुलिस रिपोर्ट करी उसने, उधर ही चलते हैं। वहां जाकर देखा उसने 1 वर्ष या 2 1.5 वर्ष के बाद, क्या देखा कि उसके दो

0: आज चार बैल बंधे हुए हैं भाई, ये कौन सा जंतर मंत्र है इसके पास, इसने यो पूछूंगा मैं। और उसने वो वहीं सो रहा था किसान, उसको उठाया कि भाई उठना एक बार। वो किसान कहने लगा, सोया था, ने बोला भाई मुझे मत छेड़, मुझे सोने दे, सारा दिन काम किया है, नींद अभी लेटा हूं, सोने दे। वो कहने लगा भाई मैं चोर हूं। वो चोर कहने लगा मैं चोर हूं। ने बोला भाई चोर है ना, अपना काम कर दो, तू आया है, मुझे अपना सोने दे। अब वो कहने लगा रहा जो काम मैं करना चाहू था वो मेरे अतीब होता कोई ना, इसलिए तुझे जगाऊ ना, मैं कितने जगाऊ हो, अब मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा जंतर मंत्र है तेरे पास भाई। फिर उसने बताया भाई चाहे मारिए चाहे छोड़िए मुझे, चाहे सजा दिए दंड दिए, अब सच्ची बात बताऊंगा, तेरा पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और मैंने तो वो अपना वो पैसा मेरा नहीं गया बर्बादी में, और तेरे दूसरे दो बैल भी मैं चुरा कर ले गया था। आज मैं जो का तू उसी स्थिति में हूं, और तेरे ये चार बैल बंध रहे हैं, इसलिए आज से मेरे पर चोरी ना होती भाई। अब मैं चोरी करने की स्थिति में नहीं रहा, मेरा हाथ कांप है, सारा शरीर कांप रहा है कि ये देख तेरा तो नाश हो जाना चाहिए था, तेरे पास तो कुछ था ही नहीं उस दिन, तू बहुत गरीब था, तेरे मकान भी सुथरा बना लिया। तो वो बैठ गया, फिर ने बोला भाई जब तने यह जड़ी पूछ ली तभी बताऊंगा, बैठ जा भाई। अगर इस चोरी करने से कोई सेठ हो साहूकार बने तो कोई करके नहीं खावे, सब चोरी कर ले। तूने तो भाई घोर पाप इकट्ठा कर लिया, परमात्मा की भक्ति कर, मैं बताता हूं मैं कैसे, मुझे भगवान सहारा दे रहा है, मैंने गुरु बना रखा है, और तू चल तुझे नाम दिलाऊंगा अपने गुरु जी से, तेरी भी ऐसी मदद होगी। वो बोला भाई ठीक है, मुझे कुछ भी दिला कुछ भी बराबर, पर मुझे यह जड़ी बता दे जो नूर सेठ होया करे। गुरु जी के पास ले गया, उसको बताया, फिर उसने अपनी सारी कहानी बताई कि महाराज जी मैं कति गणा ढेड़ आदमी हूं, नीच व्यक्ति हूं, और मैंने इसके तीन बैल चुराए, आज मेरे पास एक भी नहीं, और पैसा भी खाने को नहीं, बालक भी भूखे बैठे हैं, और आपके चेले के ठाठ हो रहे हैं, मैं या युद्धंतर पूछन आया हूं। परमात्मा बोले ले भाई युद्धंतर तू भी ले ले, नाम ले, भक्ति कर, और बेटा तुम भी ऐसे सुखी हो जाएगा, पर आज के बाद चोरी ना करिए, कान पकड़ दिए, अगर नहीं गुरुदेव सपने में भी नहीं करूंगा, और भी करता होगा मेरे मित्रानों ने भी समझाऊंगा भाई।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
1: पुणात्माओं, परमात्मा पर विश्वास जब हो जाएगा आप पर, आपका आपकी एकदम नेचर बदल जाएगा आपका। उसने मित्र समझ लिया उसको कि चोखा भगवान का नाम ले लिया, इसके बच्चों का कल्याण होगा, इसका होगा, मेरा क्या बिगाड़ दिया इसने, अपने कर्म फोड़ दिए। उसको घर पे लाया, फिर वापस नवला रोटी खा और रुक रात ने, और कल ये बैल ले जा, तू एक और दूंगा तेरे को, और अपनी कमाई कर और भाई अपने बच्चे पाल दे। अब वो एक बैल ले गया चोर, अब उसने अपनी गलती मान ली, प्रायश्चित कर लिया, अपनी लगा खेती करनी। अब 2 साल के अंदर वो 4 बैलों के पैसे लेकर और वापस आया, जिसके वो चोरी करके ले गया था 3 बैल उसके, और एक वो उसने उधारा दिया था। 4 बैलों के पैसे लेकर उसके पास पहुंचा 2-3 वर्ष के बाद, के ले भाई ये तेरे बैल चुराए थे उनके पैसे, अरे का आपने मुझे उधारा दिया था इसके पैसे, आज मैं परमात्मा ने मेरे ऊपर मेहर बख्श दी और सब तरह से मैं सुखी हो गया। पहले भी आता रहता था, सत्संग सुनता रहता था, विचारधारा परमात्मा से सुनता रहता था, फिर उस दिन वो लेकर आ गया पैसे, पता लग गया कि ये इसका लोन मैं क्यों रखूं अपने सिर पे। तो उसने कहा भी मैं ना दूं एक ना पैसा तेरे, मेरे तो भगवान ने ठाट कर रखे, तो इस पैसे को चल गुरुदेव के चरणों में रख दे, तेरा धर्म में लग जाएगा। ऐसा ही किया। तो पुणात्माओं, ये बातें कर्ण सुनन की नहीं, ये कर पाड़न की है, ये सच्चाई है। कि आप देखना इस परमात्मा के हाथ एक बार लग कर देखो सच्चे दिलते हैं। और फिर आज तो आप लूटते हो दुनिया को, कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, दोनों दुखी हो रहे हो, इधर से नुकसान हो रहा है, उधर से आप अपनी नेचर खराब करके भाव बिगाड़ करके चोरी रिश्वत लेते हो, और फिर आपके आत्मा में कैसी शांति होगी। एक तो ऐसा माहौल बदल जाएगा कि विष दिखाई देगा आपको, उसके विषय में परमात्मा बताते हैं जब तुझे ज्ञान हो जाएगा, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। जब आपको ये पता चल जाएगा कि एक कण पड़ा है विष का, ये विष का कण है, आपको पक्का पता है कि विष है, कहते उस कण को भी कौन जी बदर, ऐसा मूर्ख कौन है। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो, के फिर आपके घर में एक न्यारी खुशी होगी, आपकी आत्मा में न्यारी खुशी होगी, और ये एक दूसरे से लूटना खसोटना बुरी नजर रखना बुरा कर्म करना ये एक विष दिखाई देगा। फिर उस विष को जब आपको पता चल गया ये विष है, फिर खा के दिखाइए उसको, अब तो हम अनजान पड़े में ये जुल्म कर रहे हैं और फिर उसका दंड भी हम भोग रहे हैं। पुणात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना होगा, और जो समर्थ परमेश्वर है वही हमें ये सुख दे सकता है, हमारे भाग्य से भी अलग, किस्मत में ना होगा तो भी आपको देगा। और आपने पहले इस परमात्मा की शरण में आने से पहले चाहे कितनी ही गलतियां कर दी हों, क्योंकि वो आपकी अनजानपने में की गई गलतियां हैं, अज्ञानता से की हुई गलतियां हैं, और काल प्रेरणा से की हुई गलतियां हैं वो परमात्मा खूब समझते हैं कि इस जीव के बस का नहीं, ये काल ने इसको इतना भ्रमित कर दिया कि ये कुछ भी कर सकता है। और फिर ये ऐसा विधान बना के छोड़ दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, बुरे करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट, शुभ करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट। और इस लोक में शुभ करने के लिए तो बहुत प्रयत्न, अशुभ करने की जरूरत नहीं आप होंगे। जैसे पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे, जो चौका तुम दे वो नेता, सत्र ब्राह्मण की है हत्या। अब जैसे डेली पोचा मारते हैं, या वैसे लीपते हैं, या वैसे सैर सपट्टा करते हैं, या कोई खेत में हल जोतता है, या मजदूर कस्सी से खोदता है, करोड़ों जीवों को मारकर श्याम को विश्राम करता है, इतने पाप इकट्ठा कर लेता है। और पुण्य एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उसको कोई लाभ नहीं होता, न उसको सुख होता है, न उसकी गति होती है, न उसके कोई कार्य में कोई सिद्धि प्राप्त होती है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं। अब आज तक इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा कि आप क्या साधना करते थे, मनमाना आचरण करते थे, मनमानी पूजाएं करते थे जो आपको कुछ भी लाभ देने वाली नहीं थी। तो जो पूजा साधना आप करते थे वो तो यूजलेस, और जो भी दान आप करते थे बिना गुरु के, क्योंकि पूरे गुरु बिन बात नहीं बनती, इन नकली गुरुओं को नकली मेहनतों से आपने उपदेश ले भी लिया, गुरु शिष्य बन भी गए, इनसे भी कोई लाभ नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका पुण्य तो एक भी नहीं बने था, और पाप इतने बने दिन में गिनती नहीं हुए। तो आप जब तक पूर्ण परमेश्वर कबीर देव जी की शरण में इस दास के माध्यम से नहीं आओगे, नकली कबीर पंथियों से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। इस दास के अतिरिक्त सभी डुप्लीकेट पंथ हैं, ये कबीर पंथ में भी इनके पास सतनाम नहीं है, इनके पास सारनाम नहीं है, और सतनाम और सारनाम ही मोक्षदायक है और पाप नाशक है। वो केवल इस दास पर रजा बख्शी है परमेश्वर, ये सत्कर मान लेना, ये अभिमान नहीं, ये सच्चाई समझना। तो उसके अतिरिक्त जो भी आप साधना कर रहे थे वो तो यूजलेस थी, कोई पुण्य नहीं, और पाप आप पर बने थे, पापों का ढेर लगता चला जावे था, और आपके जो कुछ पिछले संस्कार पुण्य थे वो इस जीवन में समाप्त हो जाने थे। और फिर अगले जन्म में क्या होगा, वो पाप भोगने के लिए 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में आप जी की ब्रांड मट्टी शुरू हो जाती है, दुर्गति शुरू हो जाती है। एक जीव का आप देख लो जीवन, क्योंकि अब तो आपका नशा हो रहा है, दो टाइम पर टूक मिल जाए, अच्छी मोटरसाइकिल कार होगी, सामने गुटी ला लें, अब फिर पता ही नहीं क्या होगा आगे, इतनी सोचने की समय नहीं छोड़ रखा काल ने। लेकिन इस सत्संग माने से आंखें खुल जाती हैं पुण्यात्मा की कि क्या कर रहा था और क्या करना चाहिए था। फिर ये इन प्राणियों को देखकर चिंतित होता है, भगवान यदि आज भगवान कबीर साहब की शरण ना मिलती तो हम भी ऐसे ही भटक रहे होते, कहीं पशु बनते कहीं पक्षी बनते। तो पुण्यात्मा परमात्मा के इस ज्ञान से जो पुण्यात्मा होती है उनको एक डर विशेष बनेगा और भय बिना भक्ति बने नहीं। अब जैसे कई व्यक्ति कह देते हैं कि जो संतों ने वाणी बोली है, एक तो यथार्थ, एक भयानक, एक ऐसी एक वैसी, जैसे कोई कहता भी किसने देखा आगे क्या होगा, पशु बनेंगे या पक्षी बनेंगे, ये तो कहन की बातें हैं, ये तो डराने के लिए होती है। अपुन आत्मा कोई चोरी चोर करता है, उसको कोई बुद्धिमान जेंटलमैन बताता है कि भाई चोरी ना कर, चोरी नहीं करनी चाहिए, पुलिस पकड़ेगी, तुझे कुटेंगे, काला मुंह करेंगे, तेरी सजा होगी, ऐसा ये गलती ना करे। और वो नो सोचे कि ये तो डरावे हैं, डराने के मारे कह रहे हैं, कुछ नहीं होना। लेकिन जिस दिन वो पकड़ा जावेगा चोरी करता, उसका बक्कल भी उतरेगा और उसका काला मुंह भी करेंगे और जेल में भी ठोका जाएगा। वो सारे काम बनेंगे उसके साथ में। अपुन आत्मा, यदि वो व्यक्ति उस जेंटलमैन की, वो चोर जेंटलमैन व्यक्ति की बात को मान लेता और उस डर जाता उससे, तो उसका समाधान हो जाता। वो डर भी था और सच्चाई भी थी, और उससे ना डर के उसने कितना काम बिगाड़ लिया। इसी प्रकार ये सच्चाई भी है और डर भी लगेगा, और भय बिना बात बना नहीं करती। और डर कब लगता है? जब हम ज्ञानवान हो जाएंगे। जैसे एक छोटा सा बालक, अबोध बच्चा, सर्प को पकड़ लेता है। एक बहन बतावा थी कि मेरी लड़की का लड़का आंगन में खेल रहा था, पशुओं का आंगन था, पशु खेतों में चले गए थे और उसकी माँ उसको वहां छोड़कर पशुओं का गोबर बाहर डाल रही थी। एक सर्प आ गया, काला सर्प, और उसने जाके उसको अच्छी वस्तु जान के न्यू पकड़ दिया। पकड़ते ही वो हाथ पर डस गया, उसने वो छोड़ दिया, वो खिसक गया। कुछ देर के बाद उसका हाथ सूजना शुरू हो गया। अब वो बच्चा बता नहीं सकता, उसकी माँ पूछे क्या लग गया। उस समय तो उसको कोई बच्चे को दर्द भी महसूस नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी सी वो बोलता था, ज्यादा भाषा नहीं बोल पा रहा था। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने बताया कि इसके किसी विषैले जानवर ने काट रखा है। फिर बच्चे से पूछने लगे, बेटा कैसा था, क्या था, किसने डस दिया? वो कहने लगा, भैंस की पूंछ कैसा था, काला काला। अब उसको ये नहीं मालूम था ये सांप था, उसने वो सांप पकड़ दिया और उसने वो डस दिया, तो मुश्किल से जान बची उस बालक की। एक हफ्ते के मजाकर होश में आया वो। तो कहने का भाव ये है कि जब वो बच्चा स्याणा हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, तो सर्प को इतनी दूर से देखकर भाग लेगा, और उनको भी कहेगा सर्प आ गया, सर्प आ गया, भाग लो, सांप आ गया। तो पुण्यात्मा, इसी प्रकार आप जी अबोध बालक हो जो गलतियों पर गलती कर रहे हो, इसका बहुत दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। और आपको इस तत्व ज्ञान से ये ज्ञान हो जाएगा, आपकी बुद्धि इतनी उठ जाएगी, आपको विष दिखाई देगा, वो सर्प दिखाई देगा जो कर्म आज कोई कर रहा है, चोरी जारी रिश्वत का या दहेज आदि लेकर के अपने कर्म बिगाड़े हैं। ये नहीं होगा फिर आपसे, हो ही नहीं सकता, और इसकी आवश्यकता कति नहीं। हम कितना दूसरे के धन को लेकर सुखी हो सकते हैं? अपना इतिहास पढ़ लिया, सुन ली ये कथा, ये सच्चाई है, सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से आपकी पूर्ण रूप से आत्मा निर्मल हो जाएगी, और फिर इस निर्मल बुद्धि आत्मा के अंदर ये सतनाम रूपी बीज आप में बहुत अच्छी तरह फल फूल लगा। भगवान की भक्ति शक्ति आपको इतना सुख देने लग जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते कि सचमुच भगवान ऐसा अब भी कर रहा है। पिछले उदाहरण सुना करते थे हम कि भगवान ऐसा दे दिया, उसको ऐसा कर दिया, आपको वर्तमान में दिखा देंगे। रोज कथा सुनाया करोगे अपने मित्रों को कि आज मेरा इतना ऐसा हो गया, ऐसा सुख हो गया। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हम सभी के जनक हैं, कुल के मालिक हैं, हम सभी आत्माओं के एकमात्र वो हितैषी हैं। और इसीलिए वो अपने सतलोक को छोड़कर, इसे सुंदर इतने अच्छे लोक को छोड़कर यहाँ आते हैं, गंदे लोक में कुछ समय रहते हैं, और उस समय हम काल प्रेरणा से उनके साथ कितना दुर्व्यवहार करते हैं। पुण्यात्माओं, एक जब परमेश्वर यहाँ आए हुए थे, एक रामानंद नाम के महर्षि थे, ब्राह्मण, और उनका बहुत बोलबाला था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य कर बना रखे थे, और वो उनका प्रचार किया करते थे। महर्षि रामानंद जी द्वारा निकाले निष्कर्ष कंक्लूजन जो उन्होंने वेदों, गीता और पुराणों को पढ़ा था, उसके आधार से वो अन्य जनता को शिक्षा दिया करते थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी जब 5 वर्ष के हो गए थे, उन्होंने एक उस ऋषि को, विवेकानंद नाम था उसका जो रामानंद जी के शिष्य थे, उसका सत्संग सुना। वो वैष्णु साधु थे, विष्णु जी की महिमा सुनाते थे, विष्णु जी को सर्वेश्वर बताया करते थे, श्री कृष्ण जी को परम शक्ति बताते थे। परमात्मा ने प्रसन्न किया उस विवेकानंद से कि महर्षि जी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप जी कह रहे हो कि भगवान विष्णु जी का कहीं जन्म नहीं हुआ, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मैंने शिव पुराण में कथा सुनी थी एक ब्राह्मण तय रुद्र संहिता के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है पांचवें छठे सातवें आठवें अध्याय में कि सदा शिव रूपी काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा इस शक्ति से दोनों के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और शिव की उत्पत्ति हुई। और देवी भागवत में लिखा है ब्रह्मा विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। अब उसके पास वो रखी हुई थी पुस्तकें, उसने उठाकर देखी विवेकानंद ने। अब परमात्मा के दिए ज्ञान से उसको कुछ पढ़ने को मिला कि सचमुच इसमें कुछ लिखा तो है कि विष्णु जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का जन्म भी नहीं से हुआ। लेकिन उन आत्माओं जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती यह बात आंखों देखकर भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि विवेकानंद और हम सभी ने पहले कुछ भी नहीं सुन रखा था, अपने सदग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं था और लोक वेद इतना सुन रखा होता है कि आंखों देखकर भी सदग्रंथों को विश्वास नहीं करते, इसमें जो लिखा है यह सच्चाई है, हम उस लोक वेद पर दृढ़ रहते हैं। ऐसी स्थिति विवेकानंद की होगी, आंखों देखकर भी नहीं माना। दूसरा कारण ये था उसको पता था कि संस्कृत मेरे सिवा यह कोई नहीं जानता, जितने श्रोता है कह दिया कि झूठा है, ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। और परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के थे, तिलक लगा रखा था जैसे वैष्णो साधु लगाया करते हैं। विवेकानंद जी ने पूछा कि तू कौन है, क्या तूने कहीं दीक्षा ले रखी है? तो परमेश्वर कबीर जी के बोलने से पहले ही श्रोता कहने लगे ये तो उस नीरुधानक का बेटा है, दुल्हे का बेटा है, इसका कबीर नाम है, इसकी तो आदत खराब है, ये किसी भी ऋषि महर्षि के पास जाकर उठपटांग बातें करता है, सबको ऐसे ही पूछता रहता है। एक आध श्रोता ही ऐसे बोलने लगा तो विवेकानंद ने पूछा कि तू इतनी गहरी बातें सदग्रंथों की बोल रहा है, क्या तूने कहीं दीक्षा ले रखी है? कबीर परमेश्वर ने कहा कि हाँ मैंने गुरु बना रखा है। उस विवेकानंद जी ने पूछा कि तूने कौन गुरु बना रखा है? कि जो आपने बना रखा वो मैंने बना रखा। अब विवेकानंद जी कहने लगा तू सीधे मुंह बात कर, तू जुलाहे का सूदर का लड़का और मैंने ब्राह्मण और मैंने महर्षि रामानंद पंडित से नाम ले रखा है, वो तेरे जैसे सूदरों की तो शकल भी नहीं देखता, तू झूठ बोलता है, कपटी है, देखो रे लोगों ये क्या बकवास कर रहा है, मेरे गुरुजी की बेइज्जती करता है, शूद्र होकर के मेरे स्वामी जी से इसने नाम ले रखा है, कल देखना इसकी वहां श्यामत आएगी, तुम सभी आना और गुरुजी के सामने हैं इसको लाएंगे बुलाएंगे और तुम देखना ये कितना झूठा है, इसने कोई नाम नहीं ले रखा। अपुणात्मा अगले दिन 10 मस्टंडे पकड़ के ले गए कबीर परमेश्वर को, बालक को, 5 वर्ष के बच्चे को रामानंद जी के सामने जाके खड़ा कर दिया। रामानंद जी झोपड़ी के अंदर अपनी कुटिया के अंदर बैठे थे, सामने पर्दा लगा लिया था, विशेषकर उस दिन गेट के ऊपर के आज जुलाहा कबीर को लाया जाएगा और मैं दिखाऊंगा इनको, मैंने इसको कोई उपदेश नहीं दे रखा। ऐसा ही हुआ, पर्दे के अंदर से पूछा स्वामी जी ने कि तू कौन जात है तेरी और किस पंथ से यानी संबंधित है, तेरा कौन सा पंथ है? आप देखो पुण्यात्मा, परमात्मा सामने खड़े हैं, एक 2 कौड़ी का जीव रामानंद अंदर से कैसे भगवान के साथ दुर्व्यवहार करता है और बाद में कैसे स्वीकार करता है। हमारी सबकी ऐसे बुद्धि जो है ना भ्रमित है, काल ने हमारा नशा कर रखा, मंडी पा करे हैं और किसी का कोई ब्योत नहीं, धरती तोलते फिरते हैं, 1 मिनट में अदरंग मार जा, पड़ा पड़ा मुंह बावे, माए मुख मक्खी निकले और बड़े मुंह में के हाथ भी ना उठे जीव का और पता नहीं 1 मिनट में के कुकर्म करने तैयार हो जा। तो ये अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी को विद्या का, किसी को जाति का, किसी को पद का, किसी को धन का। ये अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ गुरु और शिष्य की आपस में जो वार्ता होती है थोड़ी सी वो सुनाएंगे, और जो दास आपको सुनाने जा रहा है उसका भूमिका बना रहे हैं। आड़ा पड़दा लाए करे रामानंद बुजंते, दास गरीब कुरंग छवि ही अजर डाक कूदंत। कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति वो बोलत है बलि जाऊं में। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। अब यहाँ पर आदरणीय गरीबदास साहिब जी परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी की महिमा आंखों देखी अपने उनके द्वारा प्राप्त उस तत्व ज्ञान से मैं ही लिख रहे हैं, परमेश्वर के द्वारा प्राप्त उस दिव्य दृष्टि से देख कर लिख रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटना रामायण और कलियुग के अंदर ज्यों की तू अपने सिंपल लैंग्वेज में यथार्थ चित्रित कर दी थी, लिख दी थी, इसी प्रकार गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की, परम पूज्य कबीर जी की वो यथार्थ घटना लीला अपनी अमृतवाणी में बोली, कैसे कैसे वार्ता हुई थी उनकी, तो गरीबदास जी अपनी तरफ से बता रहे हैं। इसलिए यहां गरीबदास शब्द आ रहा कबीर जी के स्थान पर। कबीर परमेश्वर क्या बोले, रामानंद जी ने पूछा कौन तुम्हारी जाति है और क्या तुम्हारा नाम है, तो गरीबदास जी कहते हैं आधीन होकर जैसे गुरु जी के सामने एक शिष्य सुयोग्य शिष्य को व्यवहार करना चाहिए ऐसे कर रहे हैं। और क्या बोले, बोलत है आधीन गति, आधीनी से बोल रहे हैं गरीबदास जी, कहते हैं मैं बलिहारी जाऊं उस परमेश्वर के समर्थ शक्ति होते हुए इतने भी नम्रता से बात कर रहे हैं छोटे से जीव के सामने। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ मेरा नाम निरंजन कंत। पुणात्मा इस परमात्मा की, परमात्मा खड़े हैं 5 वर्ष के बालक के रूप में, महर्षि रामानंद जी बैठे हैं और अपने एक जीव को सद्बुद्धि देने के लिए परमात्मा कितना कष्ट उठाते हैं। अब रामानंद जी गालियां दे रहे हैं भगवान को और वो करबद्ध खड़े हैं। तो पुणात्मा हमारा हितैषी कौन है, एक शराबी बालक लड़का, बाप ने बुंडी अच्छी कह देता है और वो बेचारा आंखों मासू बहाता बैठ जाता है और फिर भी ये सोचता है इसकी नशा उतर जाएगा तब ये ठीक बोलेगा मुझे। तो पुण्यात्माओं यही स्थिति आज हमारी है। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुए भांग पड़ी।
2: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6666 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैल

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाच स्टूडियो दे नंबर उते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह दी जानकारी लेन लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अति होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue South East Calgary near Stampede Ground।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईवस्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामां नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6666 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकदे हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लैण लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, Southeast Calgary, near Stanford.

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लैन लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue Northeast Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल का पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलग्री इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 to 8 PM तक ते शाम 5 to 6 PM तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-6060 या विजिट करो www.punjabi.com।

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, पर कृपा हर नाम गवायो, सर्ब सुख हर नाम वडाई, गोर प्रसाद नानक मत पाई। सलोक
1: पवन गुरु पाणी पिता माता तत महत, जिस राधे दाई दाया खिले सगल जगत, चंगियां आईयां बुरियां आईयां वाचे तर महदूर,

मसकत काल नानक ते मुख उजले किति छुटे नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

शंख औगुण मेरे हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत चाड बिख बिख खाय माया मोह परम पैले सुत दारास सुत दारास शो प्रीत लगाय एक उत्तम पंथ सुनियो गुरसंगत तेह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास

पांडे टाकियां जल्दी करे पुकार। जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवेंगे आ। नानक जिन

0: निरंकार आकार अचल पूर्ण अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासे जाको हो है कृपाल सो जन प्रभ तुम मिलासी तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहते रहियो।
1: किया खेल बड मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहया अमृत ते मीठे जाके बचना माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइए परमारथ सत संगत से ती मन खचना किया खेल बड मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना।

0: हाथ धरियो जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तात स्यो तात मिलायो अंगद कृपा तार अमर सत गुर थिर कियो अमर दास अमर्थ शत्र गुर राम दियो गुर राम दास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बाण मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जुन पिखो नैण।
1: श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर कहा मान निज निदान सच जान मंत्र ए है निसबसर होए कल्याण रहे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यों छाड तो होमे का फंद काट साध संग रत जियो दे गे हो त्रेस ने हो चित विलास जगत एहो चरण कमल सदा से ओ दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही ये तार तज विकार मन गे अंध श्री गुरु श्री गुरु सत जियो
2: नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सद

0: की गोरे रामदास राखो सरना।
1: सुकहो टाल गुर सेविए एहन सुसहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी, तुद दिथे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सचा पातशाह सिर सहांदे, जिस पास बैठिया सोहिए सवना दा विसाहु। सजन सचा पातशाह सिर सहांदे, जिस पास बैठिया सोहिए सवना दा विसाहु। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, तनासरी महला पांजवा। वड़े वड़े अराजन

0: लापट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी। बिखिया मैं के नहीं त्रिपत न पाई, ज्यों पावक ईदन नहीं तरापे, बेन हर कहाँ अगाई। रहाओ देन देन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न भूखा। उद्यम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा। काम बंत कामी बहु नारी, पार गृह जोह ना चुके। देन प्रत करे करे पश्चतापे, सोग लोभ मह सूके। हर हर नाम अपार अमूल, अमृत एक निदाना। सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। हर हर नाम अपार अमूल, अमृत एक निदाना। सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पांजवा, वड़े वड़े राजन अर भूमन, ताकि त्रिशन ना बूझी। लापट रहे माया रंग माते, लोचन कछु ना सूझी।
1: आनंद भया वड़ पागी हो,

दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहे आभार।

बोल जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथमा भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास। राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद ना। सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याया जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नाव निधि आवै ताए। सब था

जिन मेरा सतगुर देखे आ जाए। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जन आमाए। मन चाओ भया

0: जन्मुख को हर कृपा कर नित जप हर नाम तेरा आवे।
1: श्लोक महला दूजा। एक नहीं आस के दूजा लगे जाए, नानक आसक कांडिये सद ही रह समाए। चंगे चंगा कर मने मंदा मंदा होए, आस के होना आखिए जे लेखे वरते सोए महला दूजा।
2: सलाम जवाब दोवे करे मुडो कुथा जाए, नानक दोवे कूड़िया थाई न कहाई पाए पौड़ी जैसे।

पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए और मत सुन अगली आवाज पी धूणा खाए खसमे करे बराबरी फिर गैस अंदर पाए वजो गवाए अगला मुहे वो पान खाए जिसका जिता खावना।

0: एक नहीं दाता पसते जो पाइए, नानक सा करमा साहिब तुठे जो मिले महला दूजा।
1: एक नहीं चाकरी जिथों खस ना जाए,

सब किसियों पे आप बड़ी बटेटिया बटियाई किस कहना कहन लगा ऐसो कता कदर करी दे दिया रिजक समाए साई का कमावनी और छोटी

सहन सुसहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसाम दी, नूर अरसों कुरसों चटी, तुद दिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सच्चा पातशाह सिर सांदे, जिस पास बैठिया सोहिए, सवना दा विसाह। सजन सच्चा पातशाह सिर सांदे, जिस पास बैठे

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਪਲਾਹਾ ਡਿਜਾਰਡਿਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1: ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਫ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਆਟੋ, ਹੋਮ, ਮੋਟਰਬਾਈਕ, ਬੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪਲਾਹਾ ਜੀ ਨੂੰ 403-554-44-44
0: ਯਾਨੀ 403-554-4444 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਜੀਤ ਪਲਾਹਾ ਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 210 23 32nd ਐਵਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11 2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका ते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R Roofing and Siding Limited दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R Roofing and Siding Limited।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सरब लो दे पांडे फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
4: कैलगरी दे इक्को एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

0: लाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300 और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग रूफिंग सॉफ्ट फेशिया जेम्स हार्डी ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150-109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: सेवा करके उदी रोज रोज मैं सेवा करा ते सुख पावा। जे असी समझना होवे ता असी इतिहास तो भगत साहिबाना दियां साखियां चो समझ सकते हैं कि किहो जिहा सुख मिलदा जो असी रब दे नाल सच्चे दिलों जुड़ते हैं, जदों असी गुरबाणी दे नाल गुरु दे नाल जुड़ते हैं, जदों असी भगत सैन जी की जिहड़ी साखी आ वह पढ़ते हाँ। सुन प्रताप कबीर दा दूजा सिख होया सैन नाई, प्रेम भगत राती करे भलके राज द्वारे जाई। आए संत प्रौणे कीर्तन होया रैण सवाई, छड ना सकै संत जन राज द्वार ना सेव कमाई। जदों भगत सैन जी कबीर जी दे सिख बने तां उन्हां दे घर जदों मित्र प्यारे रब दे प्यारे रब दा नां लैण वास्ते आए, वह राजे दे दरबार दे विच कम करदे सन। वह जदों आए तां सारी रात कीर्तन करी गए, रब दा नाम लई गए, याद करी गए, रैण सबाई करी गए। तां जदों सवेरे जा ना सके अपने काम दे मुताबक, तां सैन रूप हर जाए कै आया राणे नूं रजाई। तां सैन जी दा रूप हो के अकाल पुरख वाहिगुरु राजे नूं मनाउण चलिया गया। तां जदों अगले दिन उठे शर्मिंदा हो के राजे दे दरबार च गए भी मैनूं सज़ा मिलूगी कि मैं अपने समय दे मुताबक अपनी नौकरी ते नहीं पहुंचिया, तां सज़ा तां की बननी सी। अकाल पुरख वाहिगुरू ने इज्जत रखी तां राणा दूरों सदकै खोल कवाए गलों पहनाई। अपने जिहड़े गल दा पटा जो उहदे राजभाग दी निशानी हुंदी आ उह अपने गल चो खोल के सैन जी दे पा दित्ती ते कहा, वस कीता हो तुद अज बोलै राज सुणै लुकाई। ता राजे ने कहा, तू इन्नी सेवा कीती मैनू वस दे विच कर लिया। ता इस तरह सच्चे पातशाह जी अपने भगतां दी जिहड़ी रख्या वा वह करदे आ। ते इस शब्द दे विचों भी सानू यही सिक्ख्या मिलदी आ कि हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई। अकाल पुरख वाहिगुरु की सेवा करके सारे तरह का जिहड़ा सौखा वह मनुख नू मिल जाता है। आओ हुण लड़ीवार शब्द की विचार।
1: बलहारी सतगुर तिस जिन सोझी पाई।
0: अकाल पुरख वाहिगुरु तो सच्चे पातशाह जी बलिहार जा

फिर बदल दिया। धर्म के मर्मज महाशयों, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी थी वो बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर और सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल यानी नाश करने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इसमें तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, भक्ति खत्म हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। अरे यहाँ के गए था ये पेरेड देख, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, पाताल में नहीं जान दूंगा, अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। और फिर न कहे देख एक बार तो जाना ही पड़ेगा, फिर तू टट्टू कर देगा। बता ये बकारे थे हम नाचते ही, मैं ऋषि की पदवी पा रही है और गुरु बन रहे,

पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा ओढ़े मूल मूल खासा गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मूल मूल खासा गल मोतियों के हार, पतिव्रता को मिले न खादी सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, इन पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूढ़ गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, सचों को तो ये झूठा बतावे इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। पुनात्मा आपको वेद दिखाते हैं, वेद क्या बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है प्रारब्ध के, जैसे परमेश्वर कबीर जी ने कहा है अपनी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराण घास। परमात्मा कहते हैं कि इस सतनाम से, ये जो मंत्र मैं तुम्हें दूंगा, इससे आपका सभी पाप नाश हो जाएंगे, संचित भी प्रारब्ध के भी, और क्रियावान तो आप पर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम पाप कराएं को नहीं, सोच बूझ के कदम रखेंगे, और फिर भी किसी कारण से इच्छा कर्मा रहे नहीं बिन इच्छा मर जा, कह कबीर तास का पाप नहीं लगे, तो वो हमारे पास साबुन और जल ये सतनाम है, किसी कारण से अनजाने में कोई गलती पाप हो जाता है तो इस मंत्र से वो साफ हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं यजुर्वेद क्या बताते हैं, उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा लिखी है कि वो घोर पाप को भी काट देते हैं। अब एक बात समझण की है पुणात्माओं, ये महर्षि दानंद अंडी पाक रहा था इस कलयुग में, और इसकी विचारधारा वही थी जो इन अन्य ऋषियों की थी जिनको वो रिजेक्ट करना चाहता था। ये देखिएगा उनके अनुभव, उसके सारे जीवन में जो उसने किया और सोचा और समझा, वेदों को सत्यार प्रकाश में लिख गया, ये थोड़ा सा दिखाएंगे एक झलक, ये सत्यार प्रकाश है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया, ये कहां से छपा है, किसने प्रकाशित किया है, इसमें ये देखो वेदों की मोर लगा रखी है कि मैंने इन वेदों आदि सभी सदग्रंथों से प्रमाण देकर इस सत्यार प्रकाश की रचना की है, महर्षि दानंद कह रहा है।

0: वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण संवित श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। महर्षि दानंद के द्वारा ये वेद आदि सभी सदग्रंथों से के प्रमाणों से लिखा है। इसमें जो लिखा वेदों अनुसार है, ये इनका कहने का ये भाव है। और ये यहाँ से प्रकाशित है। और छपा कहाँ से है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। अब इसके सातवें समोल्लास में ये देखिएगा, ये सप्तम समोल्लास है, 163 पृष्ठ पे, और ये 27 प्रकाश है। किसी ने प्रश्न किया, ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं? उत्तर, नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से नहीं डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। इन मबुद्धि तो थी नहीं, ये तो उसी कैटेगरी का था जो ये ऋषि में ऋषि थे, उसी कुल से था जो ब्राह्मण वर्ग से, लेकिन उस पुराणों से भी अधिक अज्ञान बना के, और इसने इसको सत्यार प्रकाश रूपी इस बोतल में डाल दिया वो अड़ंगा, और हम इसको अभी तक समझ नहीं सके थे। इसी प्रकार हम सभी अज्ञानता बस जो भी पाप कर लिया, अक्षण मांस खा लिया, चोरी कर ली, जारी कर दी, कोई और गलतियां होगी, वो अज्ञानता से और किसी के कुसंग से हो गई। अब हम फिर मुख्य धारा में आ जाएंगे, भगवान हमारे सारे मुकदमे वापस ले लेगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। ये तो इसका प्रैक्टिकल, ये भी झूठा हो गया इस संसारिक दृष्टिकोण से जिसने इसने उदाहरण दिया। और अब वेद फेल करेंगे इनकी अज्ञानियों की थ्योरी को। वेद बताते हैं परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है, ये देखिएगा ये जरूर। और इसको इस अनुवाद भी दानंद जी ने कर रखा है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक ये प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। और महर्षि दानंद सरस्वती कृत इसका अनुवाद किया है इसने। ये ही इज नॉट राइटर ऑफ द वेदास, ये वेदों का लेखक नहीं है, वेदों का अनुवाद करता है महर्षि दानंद। ओनली अनुवाद में भी इसने ये देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां मंत्र, ये है अध्याय 8 यजुर्वेद 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे, यहाँ पर है ये 13वां मंत्र, और इसका अनुवाद इन्होंने किया है यहाँ पर 242 पृष्ठ पे। यजुर्वेद ये 242 पृष्ठ पे ये अर्थ है, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। ये मित्र का अर्थ इसने उलझाने के लिए लिखा या परमेश्वर के लिए है? इसने सत्यार्थ प्रकाश में खुद कहा है प्रथम अध्याय में कि सबका सबसे हितकारी होने के कारण और इतैसी होने के कारण परमेश्वर का नाम मित्र है। तो हम यहाँ परमेश्वर कहेंगे, हे सब के उपकार करने वाले परमेश्वर, दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो, यानी जो दान देता है उसके प्रारब्ध में जो पाप हैं उनका नाश कर देते हो। यानी कुछ ऐसे पाप हैं जो दान से नष्ट होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो सेवा से साफ होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं स्वाध्याय से साफ होते हैं नाश होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो सतनाम से ही, जो किसी से भी ना हो पर सतनाम से होते। तो यहाँ लिखा है कि दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। वेद बता रहे हैं भगवान की महिमा, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध अनस्य मन अपराध के विनाश करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो, और पिता के किए हुए विरोध आचरण के अच्छे प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो, क्योंकि एवज जन्म माने नाश करना, और आत्म कर्तव्य से अपने किए हुए अनस्य माने पाप के अवेदन माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, अवेदन माने विनाश करने वाले हो। ऐनस्य ऐनस्य अधर्म के अधर्म के यानी घोर पाप के नाश करने हारे हो, और जानता हुआ मैं कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं वा करूं, किया करता हूं वा करूं। ओह वेद कहते पहले जो कर चुके और अब कर रहा हूं और आगे भी जो करूंगा अनजान पने में, तो जो कुछ भी किया करता हूं करूं उस सब का एनस माने पाप का, दुष्ट दुष्ट आचरण नहीं एनस है, हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं संस्कृत को क्योंकि नागरी लिपि है, एनस माने पाप है। तो कहते उस सर्व से माने सब एनस माने पाप के अवेजन माने नाश करने वाले आप हैं। परमात्मा कहा करते थे गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अपने आत्माओं ना तो व्यास जी को ज्ञान ना ब्रह्मा जी को ज्ञान वेदों का, नहीं तो ये भाषा कैसे कहता जो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा जी से सुना था कि कोई भी पाप कर्म का नाश प्रारब्ध का नाश नहीं कर सकता, जो दुख है वो भोगना पड़ेगा, और ना बृहस्पति जी को ज्ञान, और इस नकली में ऋषि दानंद को तो था कहीं तो बांग पिए पड़ा रहा करता, दड़ी दूध पी और दंड पेला करता। अपने आत्माओं इनको गुरु नहीं मिले, कौन से गुरु? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन परमात्म ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के विषय में जानकारी जिसमें दी गई है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और वो तुझे इस परमात्मा का ज्ञान बतावेंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में कहा कि कोई तो परमात्मा को निराकार बताता है जो जन्म नहीं लेता असंभवात, कोई उसको संभवात कहता है कि वो अवतार रूप में जन्म लेता है, तो परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं उनसे सुनो। यानी गीता ज्ञानदाता वही है, वेद ज्ञानदाता भी वही ब्रह्म है। वो कहता है कि मैं उस अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं हूं, उसको तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत बताते हैं उनसे सुनो। और वो ना ब्रह्मा जी को मिले, ना व्यास जी को मिले, और ना बृहस्पति जी को मिले, ना शुक्राचार्य जी को मिले, तो क्या बताते हैं परमात्मा? इसलिए ये वेदों से अपरिचित रहे, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। अब क्या बताते हैं? युगन युगन की वासना उही इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होवेगा तेरे वो संत लगे ना कान। अब परमात्मा क्या बताते हैं? समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव, ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पहरे नू।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM, जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
2: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 32nd Avenue NE कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयरडील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी ले कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जा होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैन लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300 और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63rd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अति होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नू 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2332 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दी सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 4039-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब इंश्योरेंस तों हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मरिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालिया दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
0: ये प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनियां तिन्ना लोकेशंस तों हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-266-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65V फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।
2: अब हम चले

शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबयो बाच बेनती चाओ पई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबय तुम कावहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो। सुखी बसय मोरो परवारा, सेवक सिख सबय करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिय, सब बैरन कौ आज संगरिय। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम हे शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चन चन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उभरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करी अहो रक्षा। राख लिहो मुहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी आहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को शिवगुन सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै। जब युद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब या करख करत हो कब हो, तुम मैं मिलत देह तर सब हो। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी भूज उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरयालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताकाउ कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। आपे अपनी बुद्ध है जेती, भरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कहीं भूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट भयो संक्रिय कैठा। सगरी सृष्ट दिखाई अचम भाव, आद जुगाद स्वरूप सुजम भाव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख वार असिख संघरो। दुष्ट जते उठवत उतपाता, सकल मलेश करो रणकाता।
जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वय सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते

सर्वठार मोहो सहाय दुष्ट दोख तेले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं अन्यों। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मन्यों। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यों। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो हे बखान्यो दोरा। सगल द्वार का शाड़ के गए।

तेरे सागल विसूर दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गोरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सत।

0: कितोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले नानक नाम मिले ता जीवन तन मन थीवै हरे तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले नानक नाम मिले ता जीवन तन मन थीवै हरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुर नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा

संत मनो दुत डनो एह कोटवारी मेरी दिवस रैन तेरे पाओ पलोसा केस चवर कर फेरी हमको कर तेरे दरबार पौं कह आगे बदन पसार पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया न जाई तेरे द्वारे तुन सहज की मथे मेरे दगाई दागे हो हे सोरन मह जूझ बिन दागे भग जाई साधु होए सो भगत पछन हर लय खजान पाई कोठरे मह कोठरी परम कोठी विचार गौर दीनी बस्त कबीर कौ ले वाहो बस्त संहार कबीर दी संसार कौ लीनी जिस मस्तक भाग अमृत रस जिन पाया थिरता का सुहाग लिख कत हे ना छूटिए खिन खिन भूलन हार बखसन हार बखसल नानक पार उतार सुख टल गुर सेविया एहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफ तख समी नूर अर सौ कुर सौ चटिया तुद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह हो सिर शाहां दशाह हो जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दावे साहो सज्जन सचा पातशाह हो सिर शाहां दशाह हो जिस पास

निमख आराध्या गोर मुख पार उतारा खोजत खोजत खोज बिचार्यो राम नाम तत्सारा केल बिख काटे निमख आराध्या गुर मुख पार उतारा हर रस पीवह पुरख ज्ञानी सुन सुन महा त्रिपत मन पावे साधु अमृत बानी रहा मुकत भुगत जुगत सच पाइए